0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

98 44 96 94 98 44 96 45 98 44 56 50 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: युवाराम ढकाल सहसचिव जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बैतेश्वर गाउँपालिका 5 काभ्रे दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष तीर्थ यात्रा नजाने बा?
2: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
1: जस्तै जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
2: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
1: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
3: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सीजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृमोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिवसागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथ पुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्डा स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर, श्री एम्बकेश्वर, श्रीडी साई बाबा, ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर, अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन, मथुरा, गोकुल, रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुङ्गा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलखा।

0: होइन केटा के छ खबर?
1: ठिक छौ
0: अनि आराम छ नि?
1: हजुर आराम।
0: ए ल ल ल ल ल
1: अनि साथी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ?
0: के कुरा?
1: पशुपति आउँदैछ नि।
0: पशुपति आउने रे?
1: हजुर
0: ल म यसरी फोन गर्छु है त।
1: हस् हस्।

0: समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
1: रचना खड्का, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य।
2: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
0: विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
1: शान्ति पाखरिन, नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य।
3: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ, सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: हजुर बुबा नमस्कार।
1: नमस्कार नानी, नमस्कार।
0: के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ?
1: सन्चै छु नानी।
0: अनि यो वर्ष तीर्थ यात्रा नजाने बा?
1: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
0: जस्तै जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
1: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
0: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
2: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सिजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृमोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः महाश्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिवसागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर, ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेडद्वारका, बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सातो बाटो चरीकोट दोलखा।

नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम बैंड 7 MHz बाट म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन 2026 अक्टोबर 13 तारीख आश्विन 27 गते मंगलबार तृतीय तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया सक्षण कल्पय भरी।

0: गाते गाए खेरा हरि हरि काति बजना सफल भए काति गाए खेरा हरे।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही 2-4 भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छन् मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन